सुचे अगे रखण को ना पिटो जाए सुचा है के जेवे लगापन सलोक को हथी जाई सटिया की सो लगा दो अन देवता पानी देवता बैसंतुर देवता लूं पंजवा पाया किरता हो पाक पवित्र पापी सोतन गड्या।

0: आप गवाह सेवा करे ता कुछ पाए मान, नानक जिसनों लगा तिस मिले लगा सो परवान। महला दूजा
1: जो जिए होए सो अगवा मौका कया वाओ, बिगया बिक मंगया मत वेखो इने आओ, नाल याने दोस्ती कदे ना आवे रास, ये हो जाने ते हो वरते वेखो को निर्जास। वस्तु अंदर वस्त समा में दूजी होए पास, साहिब से ती हुक्म न चले कहीं बड़े अरदास, कूट कमाने कूड़ो होवे नानक शब्द गास। महला दूजा
0: नाल याने दोष बड़ारू सोने हो, पानी अंदर लीक जाओ तिसदा था नाथ। महला दूजा होए आना करे का मां न सके रास, जे कद चंगी करे पी देगा।

0: गुजर सर्ब कला भरपूर जिसे जत कथा नानक दासन दास बिनु बता।
1: पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेल सगल जगत चंगे आईया बुरी आईया वाचा धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ा के दूर जिनी नाम त्याया।

हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो श्री ननकाना साहेब अते होर गुरद्वारे गुरधामा दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणियां दे मान नेताणियां दे तान नेउटियां दी ओट तन धन श्री गुरु रामदास साहेब जिया आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हर मंदिर साहेब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आसा दीवार दे भोग जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सिख पढ़दे सुनदे ਸਰਬੰਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੰਤ ਦਾ ਭਲਾ वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद शुक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहिं जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे चल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्रान साह साहन गणिजै त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत तो सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत जे सतगुर सिमरंत नयन के तिमर मिट है खेन जे सतगुर सिमरंथ हृदय हर नाम दिनों दिन जे सतगुर सिमरंथ जीव की तपत मिटावै जे सतगुर सिमरंथ रिद्ध सिद्ध नवनिध पावै सोई रामदास गुर बल पाण मिल संगत धन धन करहो जे सतगुर लग प्रभ पाई है सो सतगुर सिमरो नरहो रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते बहु भांत बचावै सत्र नेक चलावत काव तौ तन एक न लागन पावै राखत है अपनो कर दै कर पाप संभू न भेटन पावै और की बात कहा कह तो सौ सो पेट ही के पट बीच बचावै सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसय गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिरशां दशा
ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ

सतगुरु की सेवा चाकरी, सुखी हूँ सुखसार, एथे मिलन वडियाईया, दरगह मोख द्वार, सतगुर की सेवा चाकरी, सुखी हूँ सुखसार, एथे मिलन वडियाईया, दरगह मोख द्वार, सच्ची कार कमावणी, सच पहनण सच नाम आधार, सच्ची संगत सच मिले, सच्चा नाए प्यार, सच्चा शब्द हरख सदा, दर सच्चा सच्यार, नानक सतगुर की सेवा सो करे, जिसनो नदर करे करतार, महला तीजा, होर विडाणी चाकरी, त्रिग जीवन त्रिग वास, अमृत छोड़ बिख लगे, बिख खटना बिखरास, बिख खाना बिख पहनना, बिख के मुख गिरास, एथे दुखो दुख कमावना, मोया नरक निवास, मन मुख मोह मैले शब्द न जाननी, काम क्रोध विनाश, सतगुर का भउ छोड़िया, मन हठ कम न आवै रास, जमपुर बद्दी मारी है, को न सुने अरदास, नानक पूर्व लिखिया कमावना, गुरमुख नाम निवास, पौड़ी सो सतगुर सेवे हो साध जन, जिन हर हर नाम दृढ़ाया,
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਹੁ ਦਿਨ ਸਰਾਤ। ਜਿਨ ਜਗੰਨਾਥ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਪਾਇਆ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਹੁ ਇਕ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ। ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਹਰ ਪੰਥ ਬਤਾਇਆ, ਤਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਭ ਪੱਗੀ ਪਵਹੁ। ਜਿਨ ਮੋਹ ਅੰਧੇਰ ਚੁਕਾਇਆ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੋ ਸਭ ਧਨ ਧਨ। ਜਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਲਹਾਇਆ, ਤਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਭ ਪੱਗੀ ਪਵਹੁ। ਜਿਨ ਮੋਹ ਅੰਧੇਰ ਚੁਕਾਇਆ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੋ ਸਭ ਧਨ ਧਨ। ਜਿਨ ਹਰ ਭਗਤ

आपके हजूर में शब्द चमकी आनंद साहिब जी की अरदास कुल जो तुम बात करनी सच्चे पातशाह जीओ

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमारे दुष्ट सब तुम कावहो, आप हाथ दे मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन कौ आज संघरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोरे भजन की रह प्यासा। तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहौं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जू करियहो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मो बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने। जब उदकरख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तार, आप आपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंब। ताका मूड उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताक कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाई पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही भूपा।
अंडज जेरज सेतज कीनी उत पुज खान बहुरे रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुआ बैठा कहूँ सिमट पायो संकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचम भव आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगर हो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलीश करो रण काता। जे अस तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है ताकि काल निकट नह है। रक्षा हुई ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद सिद्ध करमो सब होई दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहे उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा दार।

दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाई गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक न माने ओ। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह, हम एक न जाने ओ। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तो हे बखाने ओ। दोहरा

आस गोबिंद दास तुहार राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तपाया सहज सेती मन वजिया वादाईया राग रतन परवार परिया शबद गावण आईया शबदो तगावह हरी केरा माने जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरै घर ता तेरै सब किश है जिस देह सो पावै सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावै नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरै साचा नाम मेरा आधारु साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहौ जिस दिया एह वडियाईया कह नानक सुनहौ संतहौ शबद धरहु प्यारु साचा नाम मेरा आधारु वाजे पंच शबद तित घर सभागै घर सभागै शबद वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ तित घर अन

उत्तरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उत्तरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पहे सा।

हर हर अपनी दया कर, हर बोली बैणी, हर नाम त्याई हर उचरा, हर लाहा लैणी। जो जप दे हर हर दिन सरात, तेन हाओ कुरबैणी। जिन सतगुर मेरा प्यारा आराध्या, तेन जान देखा नैणी। हौ वारिया अपने गुरु कौ, जिन मेरा हर सज्जन मेलिया सैणी। गोयलड़ा दिन चार गुरमुख जानिया, मंजी लै मेहवार चोज विडाणिया। वरसै निजर तार अमृत वाणिया। वंजलिया चीघार मजलस माणिया। गावन माज मलार सुगड़ सुजानिया। हौ मैं विच हौ मार मान वस आनिया। गुरमुख शब्द विचार सच सिंजानिया। गुरमुख पर उपकारी विरला आया, गुरमुख सुख फल पाए आप गवाया। गुरमुख साखी शब्द सिख सुनाया। गुरमुख शब्द विचार सच कमाया। सच हृदय मोह सच सच सुहाया। गुरमुख जन्म सवार जगत तराया। सच हृदय मोह सच सच।

लख सिंगार बनाया कारज नाही केत। पाधे परम पुलाणिया दूजै लगा हेत। लख सिंगार बनाया कारज नाही केत। जित दिन देह बिनससी तित वेलै कहसन प्रेत। पकड़ चलाइन दूत जम किसै न देनी भेत। छड खड़ोते खिनै माहे जिन स्यो लगा हेत। हाथ मरोड़ै तन कपे स्याह हो आसेत।

केती छुट्टी ना, केती छुट्टी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की।

हम अब गुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै फूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियों गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राख हो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राख हो सरनाई। सो कह टल गुर सेविया, अहनस सहज

लख सिगार बनाया कारज नाहीं केत, जित दिन देह बिनससी तित वेले कहसन प्रेत। पकड़ चलायन दूत जम किसे ना देनी भेत, छड खड़ोते खिने माहे जिन स्यों लगा हेत। हाथ मरोड़े तन कपे स्याहो होआ सेत, जेहा बीजे सो लुणै कर्मा संदड़ा खेत। नानक प्रभु शरणागति चरण बोहित प्रभु देत, से पद नरक ना पाई है गुर रखण वाला हेत। नानक प्रभु शरणागति चरण बोहित प्रभु देत, से पद नरक ना पाई है गुर रखण वाला हेत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार बन हस्त कायां रखिया, परमेश्वर है आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तरन चरण रखिया जगदीशर है सर्व रखिया गुरुदयाल है, पै दुख विनाशन है भगत बशल अनाथ नाथे सरन नानक पुरख अच्युत है। बिलावल महला पंजवा, ताती बो न लग गई पार बैम सरनाई, चौगिरद हमारे रामकार दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा भेटिया जिन बंत बनाई, राम नाम लाई रहाओ राख लिए तन रखन हार, सब याद मिटाई कहो नानक कृपा पई प्रभु भे सहाई। सोहिला रा गौड़ी दीपकी महला पहला, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, जयकर कीर्ताखी है करते का हुए विचारो, चित कर गावो सोहिला सिविर हो सृजनहारो, तुम गाव हो मेरे निरभाव का सोहिला हो बारी जित सोहिला, सदा सुख होए रहाओ नित नित जीड़े संभालिन देखेगा देवनहार। तेरे दान कीमत ना पवै तिस दाते कवन समार, सांबुत साह लिखिया मिलकर पावो तेल, जो सजन सीसड़िया जो होवै साहब स्यों मेल, कर कर इहो पहुंचा सदड़े नित पवन, सदन हार सिमरिय नानक से के आवन। रागासा महला पहला, छे घर छे गुर छे उपदेश, गुर गुर एको बेस अनेक, बाबा जयकर करते कीर्त होए, सो कर राख बड़ाई तोए राव, विश्वे चसिया घड़िया पहरा, तिती वारी माहो होआ सूरजे कुरुत अनेक, नान करते के केते वेस। राग तनासरी महला पहला,
गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती तोप मल आन रूप पवन चवरो करे सगल बंगराए पुलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनाता शब्द बाजंत तेरी रहाओ सहसता बनैन नर नैन हह तोहे को सहस मूर्त ननायक तोही सहस पाद जिमिल नन एक पाद गंध देन सहस तब गंध विचलत मोही समय जोत जोत है सोए किस दै चरण समय चरण होए गुरसाखी जोत प्रगट होए ज्योत भावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभत मनोवंदनो मोहयाही प्यासा कृपा जल दे नानक सार को जाते तेरा नाहि बासा राह गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर वो भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिख लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पन बड़ा हे का डंडौत पन बड़ा हे रहाओ साकत हर रस साधना जानिया तनंतरों में कंडा हे ज्यों ज्यों चलै चुबै दुख पाव है जमकाल सहस डंडा हे हर जन हर हर नाम सुमाणे दुख जन्म मरण पव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहुत सोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ बड़ा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मुंडा हे राग औड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला पीहा खाट चलो हर लाहा आगै बसन सहेला औद कट दिन सरैना रे मन गुरमिल का सवारे रहाओ हे संसार विकार संसे मह कर ब्रह्म ज्ञानी जिस हे जगाए पिया वह रस कत कथा दिन जानी जाको आए सोई विहाज हो हर गुरते मने बसेरा निज कर महल पाओ सुख सहजे बहुर ना होए गो

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो।

0: कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सुना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपा पार कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़ ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल की चाहे दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ बेपूर नानक बखाने बेनती गुदबाज कूड़ों कूड़ महला पहला
1: सच ता पर जानिए जरी दे सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा तोए सच ता पर जानिए जा सच तेरे प्यार नाउ सुन मन दसी है ता पाए मोख द्वार सच ता पर जानिए जा जुक्त जाने जियो धरत काया साध के विच देख करता बियो सच ता पर जानिए जा सिख सच्ची ले दया जाने जी की किछ पुन दान करे सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नु पुछ के बैरह करे निवास सच सबना होए दा।

0: दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम ना होई तू करता करना मैं नाही जाहो करी ना होई बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लखिया रहाऊ जात में जो जोत में जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिप सवालियो जिन कीती सो पार पया कहो नानक करते किया बातां जो किश करना सो कर रहया महला दूजा
1: जोग शब्दन ज्ञान शब्दन भेद शब्दन ब्राह्मण है खत्री शब्दन सूर शब्दन सूदर शब्दन प्राकृत है सर्व शब्दन एक शब्दन जे

गुर जहाज खेवट गुरु, गुर बिन तरया न कोए, गुर प्रसाद प्रभ पाईया, गुर बिन मुक्त ना होए, गुर नानक निकट बसा बनवारी, तिन लहना था।

संसार अगम सागर तुल्हा हर नाम गुरु मुख पाया, जग जन्म मरण भगा ए आई ही है प्रतीत, प्रतीत ही आई जिन जन के तिनको पदवी उच्च पई, तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई। अब लोक्या ब्रह्म परम सब छुटकिया, दिव्य दृष्ट कारण करन सतगुर गुर से अलख गत जा की।

तिन तरयो समुंदर रुदरखिन एक में जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडलनी सुरजी सतसंगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहेब सब ऊपर

निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर गहर गंभीर थायात बड सुपर सदा सब बिदरत नागर संत मरा

दर्शन गुरु सगल सुख सागर, हम अव गुण पर एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिख बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा से प्रीत लग। एक उत्तम पंथ सुनो गुर संग, तहे मिलंत जाम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, रत की।

एक स्यो लेवलाई अर्प मन तन प्रभु आगे आप सगल मिटाई बिनवंत नानक तार कृपा साच नाम समाई सलोक रे मन ताकौ त्याई सब बे

अंत साथियड़ा प्रभ एक दूसर नाहे कोय थान थनंतर आप जाल थाल पूर सोए जाल थाल महियल पूर रहया सर्वदाता प्रभ तनी गोपाल गोविंद अंत नाही बेअंत गुण ताके क्या गनी पाज शरण स्वामी सुख है गामी तिस बिना अन नाहे कोय बिनवंत नानक दया तारह तिस परापत नाम होय। श्लोक

आवे, चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छे आरियायत। देग तेग फतह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री